0: शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: मोहब्बत क्या है?
1: मोहब्बत, मोहब्बत जिंदगी है।
2: मोहब्बत क्या है, क्यों है, कहाँ है?
1: मेरा विश्वास है कि भगवान ने सारे दिल के रिश्ते पहले से ही जोड़ दिए हैं, बस उनका मिलना हम पे छोड़ दिया है। उसने हम सबको जोड़ियों में बनाया है और हर एक के लिए कोई एक जीवन साथी है।
2: जीवन साथी, क्या बकवास है, मैं इन सब बातों को नहीं मानता।
1: मुझे तो पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे लिए बनाया गया है और कभी ना कभी मैं उससे जरूर मिलूंगी।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन मुझे कोई बताएगा प्लीज कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे लिए कौन बनाया गया? मेरा मतलब, क्या वो मेरे नाम का बोर्ड लेकर घूम रही होगी?
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into a Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: ऐसा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: The best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: The perfect recipe for you to unwind. Masti Weekends only on Radio Masti 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Your

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रचना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Mercy 24/7 Live. Have a musty bhara weekend.

0: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है? टेंशन नहीं लेने का, टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त, बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
1: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: You see, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own babasate.
2: Namaskar, adab, deviyo, sajno, aap sabhi ka bahut bahut swagat. Singapore ke Radio Mazi 24/7 live ke studio se kar raha hai Summer Legends wala aur aap sun rahe hain Legends फिर से। अभी आपने जो शुरू में कुछ सुना होगा अंग्रेजी में, मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। नहीं, वैसे मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, वो शायद आप समझ गए होंगे, लेकिन ओवरऑल वो क्या बोल रहे हैं वो आप नहीं समझ पाए होंगे। और शायद आप में से बहुत सारे लोग तो उनको पहचान भी नहीं पाए होंगे। नहीं पहचाने ना आपकी, किसने बोला ये सब? नहीं नहीं आप मत बताइए, क्योंकि आपको तो पता है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके बहुत बड़े वाले दीवाने, उनमें से एक मैं भी हूँ, मैं जानता हूँ आप सबको भी। लेकिन जो लोग उनकी आवाज को नहीं पहचान पाए, मैं इसमें आपकी गलती नहीं मानता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि ये आवाज जिसकी है वही है आज के हमारे शो के लेजेंड। और अब आपको बता दूं कि पहले भी ये आवाज एक बार किसी को समझ में नहीं आई थी, इसलिए इस इंसान को ऑल इंडिया रेडियो से एक नहीं बल्कि दो बार निकाल दिया गया था। ये कह के यार तुम्हारी आवाज बहुत ही मोटी है यार, ये काम नहीं आएगी। लेकिन जब इन्होंने अपना कमाल दिखाया दुनिया को, तब सबको समझ में आया कि ये हैं कौन। जैसे अब आपको भी समझ में आ जाएगा, ये सुनिए आप।
3: बुराई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है।
2: जी हाँ, सिंगापुर यही है आज की लेजेंड। जो जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। द शहंशाह ऑफ बॉलीवुड, स्टार ऑफ मिलेनियम, कॉल व्हाट यू वांट, बट ही इज वन एंड ओनली द एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन।
4: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
5: ओह माय,
4: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
6: डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
4: ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला,
2: एक ऐसी पर्सनालिटी जो अभिनय का दूसरा नाम हो चुकी है। ऐसा कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है जो इस शख्सियत को नहीं जानता होगा, अमिताभ बच्चन। कभी न मिटने वाली इस आभा की हम आज करेंगे बात। इन्हीं की फिल्मों के मजेदार गाने और डायलॉग सुनेंगे और इन्हीं के कुछ इंटरव्यू क्लिप्स भी आप तक लेकर आएंगे। तो मुझे आज ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सिंगापुर कहीं मत जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप कहीं जा ही नहीं सकते, जाएंगे ही नहीं। तो सुनते रहिए सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009, दैट इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूं समर, लौटता हूं इस ब्रेक के बाद उधर।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी।
2: क्यों? सोचते ही आया ना याद, वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
3: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानी रॉयल मिठाई एंड नमकीन। अर्ली बर्ड प्राइसेस फ्रॉम $72 प्लस ऑनवर्ड्स अंटिल 11th अक्टूबर। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 6235-8840 और लॉग ऑन टू shahimaharani.com।
4: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
5: वेलकम बैक सिंगापुर, अमिताभ बच्चन स्पेशल शो आज आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। बच्चन साहब के गाने जो आपके फेवरेट हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर आकर। हम कोशिश करेंगे अपने शो के दौरान आपके गानों को भी हम प्ले करें। सिंगापुर, अमिताभ बच्चन साहब का असली नाम अमिताभ बच्चन नहीं था शुरू में। जब वो पैदा हुए थे तो उनका नाम इनकलाब सोचा गया था और कुछ दिनों तक उनका नाम इनकलाब श्रीवास्तव रहा भी, क्योंकि उस वक्त जब अमिताभ बच्चन साहब अपनी माँ तेजी बच्चन की कोख में थे तब हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई चरम पर थी और तेजी बच्चन भी उस लड़ाई में बहुत ज्यादा एक्टिव थी। तो जब अमिताभ बच्चन साहब का जन्म हुआ हिंदी साहित्य के महान कवि हरिवंश राय बच्चन साहब के घर, तो उनका नाम रखा गया इनकलाब श्रीवास्तव। लेकिन जब उन्हें देखने आए हिंदी साहित्य के एक और महान कवि अमिताभ बच्चन साहब के पिताजी के दोस्त श्री सुमित्रानंदन पंत जी, तो उन्होंने इनका नाम अमिताभ रखा। अमिताभ यानी जिसकी आभा, जिसकी चमक कभी खत्म ना हो। और कितनी सही बात है, उन्होंने ये चमक तभी पहचान ली थी। अमिताभ बच्चन साहब के एक और छोटे भाई हैं, नाम है उनका अजिताभ, जो लंदन में रहते हैं। और घर में जैसा कि मैंने कहा साहित्य का माहौल था, हिंदी साहित्य के महान कवि और लेखक श्री हरिवंश राय बच्चन साहब इनके पिताजी हैं। हर कोई जानता है इस बात को जिन्होंने मधुशाला लिखी है। और मधुशाला सिर्फ एक कविताओं या रुबाई की पुस्तक नहीं है, बल्कि जीवन की समस्याओं का कैसे सामना करें उन सब पर उन्होंने शेर लिखे हैं, रुबाइयां लिखी हैं मधुशाला से जोड़ते हुए। बहुत ही कमाल की किताब है, कभी मौका मिले तो जरूर पढ़ेगा। चलिए बच्चन साहब की बात कर लेते। तो बच्चन साहब ने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से स्कूलिंग की और दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से आर्ट्स में उन्होंने ग्रेजुएशन किया। बच्चन साहब बहुत ही मृदुभाषी हैं, हर कोई इस बात को जानता है, और बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साहब ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चन साहब भी बेरोजगारों की कतार में शामिल हो गए। बहुत कोशिश करते थे कोई नौकरी उन्हें मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रही थी। तो बच्चन साहब और उनके दोस्त सोचने लगे कि अब क्या किया जाए भाई जिंदगी में आगे, नौकरी तो मिल नहीं रही। तो जब इसी दरमियान इन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही थी तो एक दिन ये अपने पिताजी पर आकर भड़क गए, बड़े गुस्से में थे। बच्चन साहब कहते हैं कि ये मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी दिन था जब मैं बाबूजी पर भड़का। यानी कॉलेज से बच्चन साहब सीधे घर गए और अपने पिताजी से उन्होंने कहा कि आज हम समझ गए कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि आपने हमें पैदा ही क्यों किया। हरिवंश राय बच्चन साहब ये चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं कहा। अमित जी ये सब बोलकर अपने रूम में चले गए, अपनी भड़ास निकाल ली उन्होंने। इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस ब्रेक के बाद। तब तक आप ये गाने सुनिए बच्चन साहब की फिल्मों से।

0: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxon of India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition stanya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.
1: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा, डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा It's time for Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
2: आप सुन रहे हैं Legends फिर से समर के साथ.
3: आप सुन रहे हैं सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो स्टेशन सिंस 2009, दैट इज रेडियो मस्ती. मैं हूं समर और मेरे साथ यहां चल रहा है लेजेंड्स फिर से, जहां आज हम अमिताभ बच्चन साहब की बात कर रहे हैं. ब्रेक से पहले की बात को आगे बढ़ाते हैं. अमिताभ साहब ने गुस्से में आकर अपने पिता को बोल दिया कि ये सब प्रॉब्लम आपकी वजह से, क्योंकि आपने हमें पैदा किया. ना आप हमें पैदा करते, ना हम पढ़ते लिखते ग्रेजुएट होते, और अब ना यूं बेरोजगारों की कतार में लगे रहते. अब क्या करें समझ नहीं आ रहा है मेरे तो. हरिवंश राय बच्चन साहब ने इसका जवाब बड़े ही अलग अंदाज में दिया. आप खुद सुनिए बच्चन साहब की जुबानी क्या कहा हरिवंश राय बच्चन साहब ने.
4: जो रात को मैंने उनसे कहा था उसके उत्तर में उन्होंने ये कविता लिखी. उन्होंने लिखा कि ये कविता है कि जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था. जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था, और मेरे पास इसके सवा कोई जवाब नहीं है कि मेरे बाप ने भी मुझसे बिना पूछे मुझे क्यों पैदा किया. और मेरे पास इसके सवा कोई जवाब नहीं कि मेरे बाप ने भी मुझसे बिना पूछे मुझे क्यों पैदा किया था, और मेरे बाप को उनके बाप ने बिना पूछे उन्हें, और उनके बाबा को बिना पूछे उनके बाप ने उन्हें. जिंदगी और जमाने की कश्मकश पहले भी थी, आज भी है, शायद ज्यादा, कल भी होगी, शायद और ज्यादा. तुम ही नई लीख रखना, अपने बेटों से पूछकर उनको पैदा करना.
3: लेकिन जब इंसान के पास कोई काम नहीं होता तो ये सब होना लाजमी है. वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो ऐसा कर जाता है. लेकिन फिर भी बच्चन साहब कहते हैं कि मेरा जीवन अगर आज सफल है तो वो सिर्फ बाबूजी की कविताओं और उनके दिए संस्कारों और आदर्शों की वजह से. इस घटना के कुछ दिनों बाद अमिताभ बच्चन साहब को कैलकटा में एक कंपनी में जॉब मिल गई. यहाँ इन्होंने कुछ साल नौकरी की, लेकिन नौकरी में मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि अब तक इनके अंदर का एक्टर जाग चुका था, जो बार बार इनसे बोल रहा था कि तुम एक्टर बनोगे, तुम एक्टिंग करो, ये क्या कर रहे हो, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है. दरअसल इनकी माँ जो थी तेजी बच्चन, वो भी थिएटर किया करती थी और एक्टर बनना चाहती थी, और उन्हें फिल्मों के ऑफर भी मिले थे, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से वो फिल्में कर नहीं पाई. तो कहीं ना कहीं माँ के अंदर का एक्टर बेटे के अंदर आ गया था. ये ऑडिशन देने लग गए साहब. मशहूर राइटर के अब्बास एक फिल्म बना रहे थे उन दिनों में, साथ हिंदुस्तानी. आप एक्टर डायरेक्टर टीनू आनंद को तो जानते होंगे, जिन्होंने बच्चन साहब की कालिया और शहंशाह फिल्में बनाई थी. ये अब्बास साहब के बहुत ही खास थे. इन्होंने बच्चन साहब की फोटो अब्बास साहब को दिखाई और बोला कि ये लड़का एक्टिंग करने में इंटरेस्टेड है, तो अगर आपको लगता है कि ये इस फिल्म में किसी रोल के लिए फिट है तो रख लो इसे आप. सिंगापुर पहले ये रोल टीनू आनंद ही करने वाले थे, जो इस फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब ने किया, लेकिन सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन हो गया था तो वो वहां जाना चाहते थे. तो अपना एक सब्स्टिट्यूट लाने को कहा अब्बास साहब ने, तो उन्होंने बच्चन साहब को रिकमेंड किया, और फिर हुआ स्क्रीन टेस्ट और वो पास हो गए, और होना भी था, उन्हें रख लिया गया इस फिल्म में. लेकिन कमाल की बात देखिए आप, बच्चन साहब को रोल मिला, लेकिन एक गूंगे का, जिस इंसान को आज उसकी दमदार आवाज के लिए जाना जाता है, उसका पहला ही रोल ऐसा जिसमें वो बोल नहीं सकता। बड़ी अजीब बात है, लेकिन ये सच है। मैं तो कहता हूँ एक महान घटना का जैसे कर्टेन रेजर होता ना, ऐसे था ये। बच्चन साहब पहले बोल नहीं सकते ऐसा कैरेक्टर करते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी आवाज उनकी पहचान बन जाती है। पहले वो डांस नहीं कर सकते, फिर उनका डांस, उसके स्टेप्स, उसके मूव्स हिट हो जाते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं। धीरे धीरे ये सब होना शुरू हो चुका था। अभी सब की बात होगी, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप सुनते रहिए समर के साथ रेडियो 24/7 लाइव पर लेजेंड्स। फिर से अमिताभ बच्चन स्पेशल।

0: days, endless tires, one destination.
1: It's a Masti Partner event.
2: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
3: वेलकम बैक सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो आपने ट्यून इन कर रखा है और ये है रेडियो मसी जहां पर मैं आपसे मुखातिब हूं। मेरा नाम है समर और आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से। आज बात हो रही है बच्चन साहब की। तो साहब बच्चन साहब को इस तरह पहली फिल्म तो मिल गई साथ हिंदुस्तानी, लेकिन रोल जैसा कि मैंने कहा ऐसे कैरेक्टर का था जो बोल नहीं सकता। लेकिन कोई नहीं जी, शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होनी थी, हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन साहब की आवाज ही फिल्मों में पहले आई थी। 1968 में एक फिल्म आई थी मृणाल सेन की, भुवन शोम। उस फिल्म में एक वॉइस ओवर था जिसे अमिताभ बच्चन साहब ने किया था। एनीवे, इस फिल्म में जिसमें वो एक्टिंग कर रहे थे इसमें वो बोल नहीं सकते थे। तो एक बार जब टीनू आनंद, जिन्होंने अपनी जगह रिप्लेस करवाया था अमिताभ बच्चन साहब को, उनसे पूछा गया कि साथ हिंदुस्तानी में जो रोल अमिताभ बच्चन साहब ने किया वो आपको मिलने वाला था लेकिन आप नहीं कर पाए और आज बच्चन साहब इतने बड़े एक्टर बन गए, तो क्या अगर आप वो रोल करते आप भी उस जगह होते जहाँ बच्चन साहब है आज? तो टीनू आनंद ने क्या कहा ये सुनिए आप।
4: ये तो एक बहुत ही गलत ख्वाब होता मेरा या ख्याल है। हर आदमी अमिताभ बच्चन की किस्मत लेके नहीं आता। अमिताभ बच्चन जैसे कोई बहुत कम एक्टर हैं जो इतना काम करते हैं। तो आप भूल ही जाइए कि मैं कभी ये सोच भी सकता हूँ कि मैंने ये कि मैं वही पोजीशन पे होता जैसे अमित जी ये कहा है अगर मैंने रोल किया होता।
3: अपनी मोटी भारी भरकम बैरिटोन आवाज की वजह से दो बार ऑल इंडिया रेडियो से निकाले गए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि फिल्मों में इनका करियर एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट ही शुरू हुआ था। फिल्म के नरेटर थे ये, भुवन शोम के, मृणाल सेन की फिल्म थी। और जब बच्चन साहब के पास फिल्मों में कोई काम नहीं था, ये स्ट्रगल कर रहे थे, तब इन्हें अपने बाबूजी की बात याद आई। अगर किसी घर में जाना हो और दरवाजा बंद हो तो दीवार कूद के चले जाओ। अमिताभ बच्चन ने भी वही किया, लेकिन साथ हिंदुस्तानी और फिर ऋषिकेश मुखर्जी की आनंद में बेस्ट सपोर्टिंग रोल के अवार्ड होने के बावजूद अमिताभ के पास न तो कोई काम था और न ही रहने को घर। लेकिन फिर कॉमेडियन महमूद ने अमिताभ बच्चन साहब को दोनों चीजें दी और अमिताभ बच्चन को मिली बॉम्बे टू गोवा।

इसी बीच डायरेक्टर प्रकाश मेहरा सलीम जावेद की लिखी हुई फिल्म जंजीर बना रहे थे, पर उन्हें कोई हीरो मिल नहीं रहा था। देवानंद से पूछा, उन्होंने कहा कि भाई इसमें कोई गाना नहीं है, मैं नहीं करूंगा ये फिल्म। राजेश खन्ना के पास डेट्स नहीं थी, धर्मेंद्र ने मना कर दिया और राजकुमार साहब ने कहा कि प्रकाश जो तुम तेल सर में लगाते हो मुझे उसकी गंध पसंद नहीं, ये चमेली का तेल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हारे साथ फिल्म नहीं करूंगा। तो इस तरह से सभी ने उन्हें मना कर दिया, लेकिन राइटर जोड़ी सलीम जावेद को अपनी इस फिल्म का हीरो मिल गया था। कब? जब ये फिल्म बॉम्बे टू गोवा देख रहे थे। फिल्म देखते देखते इन्हें हीरो कैसे मिला ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। सो यू स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009, रेडियो मस्ती। मैं हूं समर, मिलता हूं इस ब्रेक के उस पार।

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक। ब्रेक से पहले की स्टोरी को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है समर और आप सुन रहे हैं सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो स्टेशन सिंस 2009 रेडियो मस्ती। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि सलीम जावेद को कैसे जंजीर के लिए कोई हीरो मिल गया, मतलब उन्होंने रिकमेंड किया। एक्चुअली वो फिल्म देख रहे थे बॉम्बे टू गोवा और उसके एक फाइट सीन में अमिताभ बच्चन साहब को देखकर इन्हें लगा कि यार जंजीर के लिए इससे अच्छा हीरो कोई और हो ही नहीं सकता, और इन्होंने बच्चन साहब को साइन करवा दिया। प्रकाश मेहरा साहब के पास ले गए कि साहब ये देखो बॉम्बे टू गोवा में ये जो लड़का है ये अपने कैरेक्टर को एकदम सूट कर रहा है। तो उन्हें जंजीर फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। फिल्म सुपरहिट हो गई आप सभी जानते हैं, और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन और हिंदी सिनेमा की तस्वीर फिर आगे के लिए हमेशा हमेशा के लिए बदल दी, क्योंकि इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा को दिया एंग्री यंग मैन। फिल्म में इनके साथ प्राण भी लीड रोल में थे, और एक सीन में जब प्राण साहब पुलिस स्टेशन जाते हैं और कुर्सी पर बैठने वाले होते हैं तब अमिताभ बच्चन कुर्सी को ठोकर मारते हुए कहते हैं,
2: तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं।
1: और इस डायलॉग के बाद ब्रांड साहब डायरेक्टर प्रकाश मेहरा को कहते हैं कि ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा एक्टर बनेगा। ये पहली फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन साहब पुलिस इंस्पेक्टर बने थे। इसके बाद तो न जाने कितनी फिल्मों में वो इंस्पेक्टर बने भाई साहब। जंजीर के बाद बच्चन साहब के पास तो फिल्मों की कतार ही लग गई। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन को शोले और डॉन के लिए भी साइन कर लिया था। उस जमाने की सबसे बेहतरीन राइटर जोड़ी सलीम जावेद के सबसे चहेते एक्टर बन चुके थे अमिताभ बच्चन, क्योंकि उनके लिखे हुए दमदार डायलॉग्स को बोलने वाली दमदार पर्सनैलिटी इन दोनों को मिल चुकी थी।
2: मैं 5 लाख का सौदा करने आया हूँ और मेरी जेब में 5 फूटी कौड़ियां भी नहीं है।
1: सलीम जावेद कहते हैं कि अमिताभ हमारी एक एक सोच पर खरे उतरते थे, चाहे वो फाइट सीन हो या फिर कोई डायलॉग बोलना हो। दिलीप कुमार साहब के बाद अगर किसी डायलॉग को इफेक्टिवली बोलने के लिए किसी को जाना जाता है तो वो है एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन।
3: पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी माँ को गाली देकर नौकरी से निकाल दिया था। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था। उसके बाद मेरे भाई तुम जिस कागज पे कहोगे मैं उस पे साइन कर दूंगा।
1: वेल अमिताभ बच्चन साहब के डायलॉग्स और उनकी फिल्मों के किस्से इतने हैं कि भाई मैं क्या कहूँ, मैं सुनाते चला जाऊंगा। तो फिर अगर मैं ही सुनाता चला जाऊंगा तो गाने कब सुनाऊंगा। तो पहले ये गाने भी सुन लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। बच्चन स्पेशल शो सुन रहे हैं आप, अमिताभ बच्चन स्पेशल शो। मैं हूँ समर और मैं बहुत अभिभूत हूँ बच्चन साहब के बारे में बातें करके।

0: सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक। अमिताभ बच्चन की फिल्मों के कुछ अनसुने किस्सों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं समर। आप सुन रहे हैं सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009 रेडियो मस्ती लेजेंड्स फिर से। मैं जब बात किस्सों की चल रही है अमिताभ बच्चन साहब के किस्सों की, तो मुझे यश चोपड़ा की दीवार का एक किस्सा याद आ रहा है। ये फिल्म दो भाई और एक माँ की कहानी है, जिसमें बड़ा भाई समाज और लोगों के जुर्म के कारण गलत रास्ते पर चलने लगता है और छोटा भाई सच्चाई के रास्ते पर चलता है, लेकिन दोनों भाई अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं। फिल्म के आखिर में एक सीन है जब अमिताभ बच्चन यानी विजय की माँ बीमार पड़ जाती है और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तब विजय यानी अमिताभ भगवान से दुआ मांगने शिव जी के मंदिर जाते हैं और वो नास्तिक होते हैं, यानी ये फिल्म में पहली बार मंदिर जाते हैं। अदरवाइज ये फिल्म में मंदिर की सीढ़ियों तक जाते हैं, वहां अपनी माँ का वेट करते हैं, माँ और भाई का, और वहां से लौट आते हैं। भगवान पे विश्वास नहीं करते, भगवान से बड़ा गुस्सा होते हैं ये। तो ये सीन जब शूट होने वाला था तब डायरेक्टर यश जी आए और सलीम जावेद के लिखे हुए डायलॉग अमिताभ को दे दिए। अमित जी रिहर्सल करने लग गए। एक घंटे के बाद फिर यश जी आए और बोले, बाबू जी क्या हुआ? यश जी बच्चन साहब को बाबू जी कहते थे। बच्चन साहब बोले, बस 10 मिनट और सर। एक घंटे के बाद यश जी फिर आए, बोले अरे यार क्या हुआ यार भाई चल। बच्चन साहब बोले, यार आपने एक ही सीन में इतने सारे इमोशंस डाल दिए, मैं कैसे करूंगा इसे? यश जी बोले, मैं समझ गया भाई, आप इसे अच्छे से रिहर्स कर लो और जब हो जाए तब मुझे बता देना, मैं पास वाले कमरे में ही बैठा हूँ। ये बात सुबह के 11 बजे की है। जब अमित जी ने पूरी तरह इस सीन की रिहर्सल कर ली तब तक रात के 10 बज चुके थे, यानी जब तक अमिताभ बच्चन पूरी तरह से कैरेक्टर में नहीं आए तब तक रिहर्सल करते रहे। इसके बाद रात 10 बजे ये सीन शूट हुआ और क्या गजब का सीन बन गया। ये हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन सीन्स में से एक माना जाता है ये सीन। आज खुश तो बात होगी तुम,
2: आज खुश तो बात होगी तुम। देखो, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है।
1: तो आप भी बहुत खुश होंगे इस डायलॉग को सुन के। पहले अभी वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर कुछ और किस्सों के साथ लौटेगा अमिताभ बच्चन साहब का आपकी तरह ही दीवाना समर। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
3: It's a Masti Partner event.
4: आप सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
5: पीटर, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ।
6: कैसी लगी आपको ये दमदार आवाज? पूछना बेकार है क्योंकि आप कहेंगे कि क्या बात करते हो यार, हम तो इनके बहुत बड़े दीवाने हैं, बहुत बड़े फैन हैं, वाह वाह वाह वाह कर रहे होंगे आप। लेकिन जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि हिंदी सिनेमा में डायलॉग्स का मतलब अमिताभ बच्चन होता है, होता था और हमेशा होता रहेगा। फिल्म जंजीर के बाद एक बार फिर राजेश खन्ना के साथ इनकी एक फिल्म आई, नमक हराम उसका नाम था। इस फिल्म में भी एक से बढ़कर एक डायलॉग्स इन्होंने बोले।
7: हमें खिलाने वाले हाथ अभी पैदा नहीं हुए।
6: इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग रोल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला और इनका ये दूसरा अवार्ड था। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कुल 14 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं और 4 नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर भी जीते हैं। इसके बाद दीवार आई। दीवार की तो क्या बात करें, मतलब कंफ्यूजन ये है कि मैं कौन सा डायलॉग सुनाऊं दीवार का आपको, सारे के सारे सुपरहिट हैं। ये सुनिए।
8: मेरे असूल, मेरे आदर्श मुझे इसकी इजाजत नहीं देते हैं।
9: उफ, तुम्हारे असूल, तुम्हारे आदर्श किस काम के हैं? तुम्हारे असूल, तुम्हारे सारे असूलों को गूंद कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती रवि। जिन आदर्शों के लिए तुम अपनी जिंदगी पर खेलने के लिए तैयार हो, क्या दिया उन आदर्शों ने?
6: चाहे फिर वो फिल्म शोले हो, ये फिल्म तो क्लासिक फिल्म है। और धर्म जी के साथ इनकी जोड़ी जय वीरू की, ये जोड़ी भी क्लासिक बन गई। इस फिल्म में भी इनके बेहद ही कमाल के डायलॉग्स थे।
10: साला नौटंकी, खड़ी खड़ी ड्रामा करता है।
6: एक्चुअली डायलॉग तो हर स्क्रिप्ट राइटर लिखता है, लेकिन उन्हें हर कोई अमिताभ बच्चन की तरह बोल नहीं सकता। अब ये डायलॉग, साला नौटंकी, घड़ी घड़ी ड्रामा करता है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ खास है। ये किसी भी नॉर्मल डायलॉग की तरह, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब ने इसे अपने अंदाज में बोलकर खास बना दिया है। चाहे फिर इनका वो बसंती से उसका नाम पूछना हो, तुम्हारा नाम क्या है बसंती? 70 के डेकेड में हिंदी सिनेमा की तस्वीर बदल चुकी थी, क्योंकि इस समय अमिताभ बच्चन नाम की आंधी चल रही थी। हर फिल्म सुपर डुपर हिट। हाल ये हो गया था कि बस अमिताभ बच्चन का नाम ही काफी था किसी फिल्म के लिए, बस वो हिट नहीं सुपर डुपर हिट हो जाती थी। बच्चन साहब की फिल्मों के न सिर्फ डायलॉग्स हिट हुए बल्कि गाने भी बड़े कमाल के। तो गानों और डायलॉग्स की बात हम करेंगे इस ब्रेक के बाद। यू स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग, सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009, रेडियो मस्ती। मैं हूं समर आपके साथ।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: लेजेंड्स फिर से मैं आपका एक बार फिर से स्वागत, अमिताभ बच्चन स्पेशल शो है आज और आप मुझे सुन रहे हैं। मेरा नाम है समर और मैं बड़ा खुश होकर ये कहानी आप तक पहुंचा रहा हूं। सिंगापुर बच्चन साहब की फिल्मोग्राफी इतनी बड़ी है कि समय कम पड़ जाएगा उनकी पूरी फिल्मों का सिर्फ नाम बताते बताते। अच्छा, हम इनकी फिल्मों के गानों की बात करने वाले थे। बच्चन साहब के ज्यादातर गाने किशोर कुमार साहब ने गाए हैं या फिर सुदेश भोसले ने इनकी आवाज को कॉपी करके कई गाने गाए हैं। बच्चन साहब खुद भी बेहद कमाल के प्लेबैक सिंगर रहे हैं। इन्होंने बॉलीवुड में पहला गाना गाया मिस्टर नटवर लाल में। इस फिल्म के गाने आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे और म्यूजिक था राजेश रोशन साहब का। तो जो गाना बच्चन साहब ने इस फिल्म में गाया था उसके लिए बख्शी साहब ने खुद अमित जी से कहा था कि आपको गाना चाहिए गाना। पहले तो बच्चन साहब बोले कि मेरी आवाज सही नहीं है, लेकिन फिर बख्शी साहब पीछे ही पड़ गए और फिर अल्टीमेटली बच्चन साहब को ये गाना गाना ही पड़ा। और क्या कमाल का गाया है गाना। ये गाना बच्चों में बड़ा पॉपुलर हुआ।
2: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो।
1: इस फिल्म के लिए बच्चन साहब को बेस्ट एक्टर और बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। कैन यू बिलीव, बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए भी। इसके बाद फिल्म लावारिस में भी इन्होंने गाना गाया। इस फिल्म में गाया हुआ गाना तो बहुत बहुत बहुत बड़ा हिट हुआ और आज भी उतना ही हिट है।
3: अरे

0: काम है।
1: इसी बीच मनमोहन देसाई के डायरेक्शन में बच्चन साहब एक फिल्म कर रहे थे, नाम था उसका अमर अकबर एंथनी। इस फिल्म का वो सीन तो आप लोगों को याद ही होगा जब अमर यानी विनोद खन्ना एंथनी यानी अमिताभ बच्चन की खूब पिटाई करते हैं और उसके बाद जब ये घर आते हैं तो आईने के सामने खड़े होकर खुद को मरहम लगाते हैं और खुद को डांटते भी।
0: बस हो गया पिटाई, तेरे को हम इसका स्टेज बोलता था कि दारू मत पी मत पी मत पी, दारू खराब चीज है।
1: अब ये इतना बढ़िया सीन, वाओ क्या बढ़िया सीन था ये। क्या आपको पता है डायरेक्टर मनमोहन देसाई की गैर मौजूदगी में ये सीन शूट हुआ था। लेकिन क्यों हुआ ये शूट जब मनमोहन देसाई सेट पर नहीं थे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बच्चन साहब के ये गाने और सुन लेते हैं, क्या बोलते हैं आप। आइए इन गानों के बाद फिर करेंगे इस सीन की बात।

0: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी।
1: क्यों, सोचते ही आया ना याद तो दिवाली वाला शाही स्वाद।
2: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिज करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानी's रॉयल मिठाई एंड नमकीन। Early bird prices from $72 plus onwards until 11th October. For more details, call 6235-8840 or log on to shahimaharani.com. Happy Diwali.
3: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
4: It's a must-be partnered event.

0: वेलकम बैक। मुझे पता था आप वेट कर रहे होंगे कि कब ये गाने खत्म हो और कब समर आए और हमें ब्रेक से पहले की बात पूरा करके बताएं। तो चलिए आपके इस इंतजार को खत्म करता हूँ। हुआ दरअसल यूं कि इसी फिल्म यानी अमर अकबर एंथनी के साथ साथ मनमोहन देसाई अपनी दूसरी फिल्म धर्मवीर की भी शूटिंग कर रहे थे, तो किन्हीं वजहों से मनमोहन देसाई साहब को धर्मवीर के सेट पर जाना पड़ा। तो जब देसाई साहब चले गए तब अमिताभ बच्चन और अमर अकबर एंथनी के कैमरामैन ने सोचा कि क्यों ना एक सीन हम खुद ही शूट कर लें, और सारी टीम मिलकर इस सीन को शूट करने लग गई। आपको यकीन नहीं होगा सिंगापुर, लेकिन ये सीन इतना बढ़िया सीन अमिताभ बच्चन ने सिर्फ एक टेक में ही पूरा कर लिया था। और जब देसाई साहब वापस आए और उन्हें इस सीन के बारे में बताया गया तो उन्होंने तुरंत ऑर्डर दिया कि भैया ये जो शूट हुआ है इसे तुरंत डेवलप कर मुझे दिखाओ। और वो इस सीन को देखकर इतना खुश हुए और इसके बाद तो वो बच्चन साहब के दीवाने हो गए। यानी इस फिल्म के बाद सिर्फ एक फिल्म को छोड़कर उन्होंने बच्चन साहब के साथ ही सारी फिल्में बनाई। फिर वो चाहे सुहाग हो या मर्द हो या फिर गंगा जमुना सरस्वती हो या फिर कुली हो, कुली में अमिताभ बच्चन साहब का डायलॉग, उनका जो एंट्री पर डायलॉग आता है वो तो मेरा फेवरेट बन गया था। जबरदस्त डायलॉग है, कादर खान साहब ने लिखा है।
1: जनाब तनिक खिड़की तो खोलिए, हमारी तारीफ जरा लंबी। बचपन से है सर पे अल्लाह का हाथ और अल्लाह रखा है अपने साथ। बाजू पे 786 का है बिल्ला, 20 नंबर की बीड़ी पीता हूँ, काम करता हूँ कुली का, और नाम है जिसके सर पे हाथ पड़े बचे ना उसका एक भी बाल।
0: एक्शन इमोशन की फिल्मों के दीवाने देसाई साहब ने अमिताभ बच्चन साहब से अपनी फिल्मों में एक से बढ़कर एक एक्शन करवाए हैं और कमाल के डायलॉग्स भी बुलवाए हैं।
2: तुम्हारा नाम भी तो एंथनी है ना?
3: हाँ सर, पर अपन खाली एंथनी नहीं है, साथ में गोंसाल्वेस भी लगे लाए, एंथनी गोंसाल्वेस, ऐसे बोलने का था ना सर, हाथ मिलाओ।
0: तो वेल सिंगापुर, अभी एक ब्रेक लेने का वक्त है और फिर आज की आखिरी मुलाकात भी करेंगे। बच्चन साहब की कहानी जारी रहेगी सिंगापुर के एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो, रेडियो मसी 24/7 लाइव के जरिए।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती, सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र हिंदी लाइव रेडियो सिंस 2009। मैं हूं समर और शो है लेजेंड्स फिर से। और आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के शहंशाह स्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ बच्चन साहब की। बच्चन साहब के नाम लगातार 15 साल तक कम से कम एक हिट फिल्म का रिकॉर्ड है, एक सुपरहिट फिल्म देने का रिकॉर्ड है। और इन सुपरहिट फिल्मों में से दो फिल्मों का जिक्र मैं जरूर करूंगा जो दोनों ही तीनों आनंद के डायरेक्शन में बनी है। पहली फिल्म कालिया जो 1981 में आई थी। इस फिल्म का एक बड़ा ही मशहूर किस्सा है। फिल्म में एक सीन है जिसमें अमिताभ बच्चन साहब के सर पर बंदूक तान देते हैं प्राण साहब, लेकिन अमिताभ उनसे छीन लेते हैं और उन्हें यहाँ एक डायलॉग मारना होता है। डायलॉग कुछ शायराना अंदाज में था, तो जब बच्चन साहब सेट पर आए और डायरेक्टर ने उन्हें वो सीन पकड़ा दिया, तब बच्चन साहब ने वो सीन पढ़ तो लिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि यार ये सीन मैं नहीं करूंगा। तीनों आनंद ने पूछा कि आप क्यों नहीं करेंगे ये सीन, तो बच्चन साहब ने कहा कि यार ये शायराना अंदाज में क्यों लिखा है, आप सीधे तरीके से भी तो लिख सकते हैं इसको। तो टीनू आनंद बोले, सर डायलॉग तो यही रहेगा, आपको यही बोलना पड़ेगा। दरअसल टीनू आनंद की फिल्म है, उनके पिताजी मशहूर राइटर इंद्रराज आनंद ही लिखते थे। तो आनंद साहब ने बोला कि मेरे पिताजी ने जो लिखा है आपको वही बोलना पड़ेगा सर। और आप यकीन मानिए सर, इस पर हॉल में तालियां बजेंगी तालियां। बच्चन साहब ने कहा, यार मुझे 10 साल हो गए फिल्में करते करते, हर डायरेक्टर यही बोलता है, लेकिन जब फिल्म रिलीज होती है तो ताली इल्ले मैं नहीं बोलूंगा। तो अब तक डायरेक्टर ने लाइट्स बंद करवा दी थी। तो साहब इस पर टीनू आनंद ने कहा कि सर अगर इस पर ताली नहीं मिली तो मैं ये प्रोफेशन छोड़ दूंगा, लेकिन अगर ताली मिली तो आपको ये प्रोफेशन छोड़ना पड़ेगा। बोलिए मंजूर है? ये देखकर बच्चन साहब उठे और सीधे लाइटमैन के पास गए और अपनी भारी भरकम आवाज में बोले, लाइट ऑन करो भाई, ये डायरेक्टर ढीठ है, ये डायलॉग बोलवा के छोड़ेगा। तो साहब फिर बच्चन साहब ने डायलॉग बोला और वाकई में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इस डायलॉग पर खूब तालियां बजी। आप सुनेंगे कौन सा डायलॉग था, वो ये था।
2: तो आतिश दोजख से डराता है जिन्हें, वो आग को पी जाते हैं।

0: नहीं करके। चला दीजिए गोली। आप तो खून की एक लकीर का पीछा करते हुए यहां आए थे, मुझे आज अगर अपने खून की नहर में तैर के भी जाना पड़े तो भी जाके दिखा दूंगा।
1: सिंगापुर फिल्मों में इस तरह के किस्से होते रहते हैं। आप देखिए, इसके बाद दोनों ने साथ में एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई, शहंशाह। इसके बाद अमिताभ बच्चन शहंशाह के नाम से जाने जाने लगे। और भी कई बातें याद आ रही हैं मुझे बच्चन साहब की, लेकिन वक्त बहुत कम है, या यूं कहूं कि अब तो बिल्कुल भी नहीं आपसे बात करने का, खास तौर से आज के शो के लिए। इसलिए आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। जाते जाते कुछ वादे करते जाइए, जैसा कि मैं आपसे हमेशा चाहता हूं। आप कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएंगे, और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोग आपको याद करें, और याद मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में। मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, टेक केयर।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: The best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
0: कोई आवाज, कोई साज, सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते, हंसाते, उदासी भरे, खिलखिलाते किस्से, समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।
2: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय?
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल? इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग?
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप?
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

0: दस का बीस।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
3: जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर आप पहुंची हूँ और रेडियो मसी 24/7 पर आपके साथ हूँ शाम के 5 बजे से। वेल गिव मी अ क्विक शाउट आउट गाइस इन केस यू आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ 9151893। और हम साथ साथ में सुन रहे हैं मसी टॉप चार्ट्स। तो बताओ कौन सा गाना होने वाला है आज के दिन में नंबर एक पर। नहीं पता, चलो कोई नहीं, मैं बताऊंगी ही बाद में।
4: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, They are spicy and they are happening.
3: Join Fresh Hot Spicy के बीच में अगला गाना जो हमारा आने वाला है, that is the title track, ये प्रेम मोहलिया। मुझे लगता है श्रेया घोषाल के अलावा आजकल कोई है ही नहीं सिंगर जो कि इस तरह के गाने चला पाए, गा पाए और हम तक पहुंचा पाए। What do you think guys? Well, the title track is composed by Himesh Reshammiya. Lyrics जो हैं कुमार के हैं और इसको गाया है obviously श्रेया घोषाल ने. And apart from that, the voices are Nihal Tauro and Himesh Reshammiya. Well, Himesh Reshammiya क्या है ना कि यार वो background का काम जरूर कर लेंगे लेकिन foreground में आने से उनको कोई नहीं रोक सकता because उनका मन है आगे आने का. बेचारे launch होते हैं, relaunch होते हैं, गाते हैं, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे. उनकी जिंदगी थोड़ी सी जरा इस तरह से चल रही है. बट चलिए ठीक है, उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी है एंड दैट इज वॉट मैटर्स. फिलहाल के लिए बात करते हैं अबाउट दिस फिल्म विच इज ये प्रेम मोहलिया. वेल ये जो कैरेक्टर है प्रेम, ये स्क्रीन पर वापस आ रहे हैं 12 साल के गैप के बाद. इस समय ऑफकोर्स इफ यू थिंकिंग सलमान खान आ जाएंगे प्रेम बन के, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, थैंक गॉड फॉर दैट. आ रहे हैं आयुष्मान खुराना. यस, ही इज टेकिंग ऑन द रोल गाइज. आई डोंट नो इफ आई टोल्ड यू दैट लास्ट टाइम और नॉट, लेकिन फिलहाल के लिए सूरज बड़जात्या का ये आइकॉनिक कैरेक्टर, इस तक पहुंचना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है. एंड ऑफकोर्स इनकी कहानी में हमेशा बड़ा ही ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली का वॉर्म्थ होता है, वो तो आएगा ही वापस. चाहे आजकल सिर्फ सुनने में ही आता है जॉइंट फैमिली, सोचने में ही आता है, करने में जरा कम ही आता है. बट दिस स्टोरी ब्लेंड्स अ मॉडर्न रोमांस विद ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली वॉर्म्थ फॉलोइंग अ रिलेशनशिप दैट स्टार्ट्स एज अ फ्रेंडशिप बिफोर फेसिंग डीप इमोशनल टेस्ट. मुझे लगता है मैंने प्यार किया ही मैं बात कर रही हूँ. बट सूरज बड़जात्या बींग सूरज बड़जात्या, यार ही हैज़ नॉट गॉट आउट from that zone. Well, लगता है 90s का जोन वहां भी चलता रहेगा रेडियो मसी 24/7 पर. क्या लगता है सूरज बड़जात्या की फिल्म आज की जिंदगी में चलेगी नहीं चलेगी? What do you think? Will you watch it? Good evening.
5: Trending song number 14.

0: कभी कभी कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन एंड कपल्स जो होते हैं ना वो एकदम एक सा सोचने लग जाते हैं. आफ्टर लिसनिंग टू दिस गाना आई मस्ट टेल यू गाइस, एक तरफ सपना जी और एक तरफ रमेश जी दोनों मुझे इंडिपेंडेंटली मैसेज लिख रहे हैं कि क्या गाना है. मतलब दोनों की पसंद एक सी. अब कहते तो ये भी है कि बहुत साल शादी के बाद और साथ में रहने के बाद भाई बहन जैसी शक्ल भी हो जाती है, तो आई विल नेक्स्ट टाइम चेक आउट कि आपकी शक्लें भी मिलने लगी हैं क्या. और आपने जो पूछा है, वेल द मूवी रिलीजेस ऑन नवंबर 27, 2026, इसमें देखने को मिलेंगे आयुष्मान खुराना, साथ में शर्वरी वाघ, अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक, सीमा पावा, सौम्या टंडन, शाद रंधावा एंड स्वनंद किरकिरे. और म्यूजिक जैसा कि अभी अभी हमने बात करी हिमेश रेशमिया की. वेल इट्स ऑल अबाउट प्रेम, आयुष्मान खुराना और एक औरत जो है शर्वरी, दे नेविगेट अ बॉन्ड बिल्ट ऑन फ्रेंडशिप. बिल्कुल मैंने प्यार किया टाइप की स्टोरी लग रही है इस टाइम पर. बट यू नो समटाइम्स ऑल वी वॉन्ट इज अ सिंपल लाइफ, है ना, कॉम्प्लिकेशंस आउट, सिर्फ और सिर्फ सिंपल लाइफ. और शायद वही सिंपल लाइफ की तरफ बार बार हमें सूरज बड़जात्या लेके जाते हैं अपनी फिल्मों के साथ में. रेडियो मस्ती 24/7 पर वेलकम बैक. जी हाँ, एंड दिस इज मस्ती टॉप चार्ट्स रेणुका के साथ.
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर. चेक इट आउट.
2: सम इनविटेशंस आर सिंपली टू स्टाइलिश टू मिस. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
3: It's a Musti partner event.
4: Trending song, number 13.

कभी कभी मेरा मन करता है कि एक खास दोस्त यहाँ पर आ जाए और हम उसी की पसंद का गाना चला देते हैं, और फिर जब वो गाना चलाते हैं और वो आ जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना, जी हाँ, यहाँ पर सफल हुई। हेलो हेलो डैंग साहब, कैसे हैं? सो लवली टू सी यू एंटर एट द राइट टाइम। आपको अपनी एंट्री पसंद आई या नहीं आई ये बताना जरूर। सत्य पर सत्ता, एब्सोल्युटली किशोर कुमार ऑन द वोकल्स।

0: What a song and what a song. Hello, good evening. 6:20 यहाँ पर रेडियो मसी 24/7 पर रेणुका विद यू.
1: They are fresh, they are hot, they are spicy.
0: जी हाँ, बात हो रही है मेरे अलावा इन गानों की भी, hot, spicy and fresh. रेडियो मसी 24/7 पर चल रहा है मसी टॉप चार्ट्स पर इस समय. Before we move on to गान नंबर 12, which is भाई तेरा स्टार है. जी हाँ, इसको आंखों से तूने 2.0 कॉपी करने शुरू कर दिए गाने सारे के सारे और फिर उनको टॉप चार्ट्स पे पहुंचा दिया. यही है आजकल का मकसद. लेकिन वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट राइट नाउ एंड शेयर विद यू इज समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट नाना पाटेकर जी. जी हाँ, जो आज के बाद हमारे साथ नहीं है बिल्कुल, लेकिन फिर भी उनकी जब भी हमें याद आएगी, उनके डायलॉग डिलीवरी, उनके बहुत ही इम्पैक्टफुल रोल, तो हम कुछ कुछ बातें तो ज़रूर सोचेंगे. लेकिन वन थिंग दैट आई ऑल्सो लर्न अबाउट हिम टुडे इज कि ना ही सिर्फ फैंस ने लूज़ किया है अपना फेवरेट एक्टर, लेकिन फॉर लैक्स ऑफ पीपल, राइट, फॉर लैक्स ऑफ पीपल दे लॉस समथिंग मोर विच इज़ अ रे ऑफ होप. आप सोचेंगे ऐसा क्या था? वेल, नाना पाटेकर जी, ही वॉजन्ट जस्ट एन एक्सेप्शनल एक्टर, ही हैड ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ होप फॉर थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स और उनकी फैमिलीज के लिए. आप जानते हैं पिछले 10 साल से थ्रू द नाम फाउंडेशन नाना पाटेकर ने हेल्प किए 77 लाख फार्मर्स, 51,000 डिजास्टर रिलीफ फैमिलीज एंड ही वॉज सपोर्टिंग नियरली 5,000 विडोज थ्रू इट्स विडो वेलफेयर प्रोग्राम. सारी ये कहानी उस समय शुरू हुई जब मराठवाड़ा, जो महाराष्ट्र में है, इट सफर डेविस्टेटिंग क्रॉप लॉसेज एंड फार्मर डेथ्स एंड दिस वॉज इन 2015. तो उस टाइम क्या हुआ, महाराष्ट्र ने रिकॉर्ड किए 3,228 फार्मर सुसाइड्स उस साल में, विद मराठवाड़ा अलोन विच हैड अकाउंटेड फॉर 1130. उस समय नाना जो है ना, ही वॉज प्रिपेयरिंग टू बाय अ लग्जरी कार. एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने टेलीविजन पे कुछ देखा एंड दैट चेंज द पर्पज ऑफ हिज लाइफ. होता ना, कभी कभी हम कुछ कर रहे होते हैं और सडनली कोई चीज़ सामने आ जाती है और हमें लगता है नहीं यार, हम कितनी मतलब छोटी बात कर रहे हैं जिंदगी में, लेकिन देखो देयर सो मच मोर इन लाइफ, राइट. सो उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए, जी हाँ, सेव किए थे विद द इंटेंशन ऑफ बाइंग अ न्यू कार. और उस शाम जब वो अपनी ड्रिंक पी रहे थे और टीवी देख रहे थे, दे वर प्लेइंग एन इंटरव्यू विद द फैमिली मेम्बर्स ऑफ अ फार्मर जिसकी मौत हुई थी सुसाइड से. मोर देन द मॉर्निंग फॉर द डेड, ही सेड, मुझे लग रहा था कि यार इनके पास खाने को कुछ नहीं है, ये सब दिख रहा है इनकी शक्ल पे. और उस उन इमेजेस को, उन प्लान्स को अनसेटल बिल्कुल कर दिया नाना के दिल को उन चीज़ों ने. एंड ही वॉज लिविंग अ वास्टली डिफरेंट, मोर प्रिविलेज लाइफ उस टाइम पर. सडनली वो जो लग्जरी कार की बात थी ना, वो बड़ी मीनिंगलेस सी लगने लगी. तो उन्होंने कहा कि मैं डोनेट कर रहा हूँ 15,000 ईच टू 1,000 फार्मर्स, मतलब पूरे के पूरे 1.5 करोड़ जो उन्होंने इकट्ठे सेव करे थे, उन्होंने कहा मैं सब डोनेट कर रहा हूँ. लेकिन तब बात हुई कि सिर्फ 1,000 लोगों को हेल्प करने से क्या होगा. बात तो ये होती है कि इस तरह से एक ट्रस्ट बनाया जाए और उसके बाद में जितने लोगों को आप कर सकें पैसे इकट्ठा करके सेवा करें उनकी. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट ही डिड. हिज 1.5 करोड़ बिकेम 60 करोड़ विद द मूवमेंट. और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, नाम फाउंडेशन, जो कि आज के दिन में 77 लाख फार्मर्स, 51,000 डिजास्टर रिलीफ फैमिलीज एंड 5,000 विडोज को सपोर्ट कर चुका है. कुछ बातें होती है ना इंसान की, सिर्फ उनके जाने के बाद में बात करी जाती है. पहले पता हो तो आप उस इंसान को अलग ही समझे और अलग ही ट्रीट करें, राइट. व्हाट डू यू थिंक? अ वेरी गुड इवनिंग. 6:24 रेडियो मस्ती 24/7 पर गाना नंबर 12,
2: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 12.

0: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Musti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
1: By the way, अगर आपने फिलहाल के लिए टिकटें नहीं खरीदी हैं SGS की, तो फिर मैं आपको बता सकती हूँ कि अब जरा थोड़ी मुश्किल है आपको मिलनी है। ओहो, कैसे आप नहीं अटेंड कर सकते सिंगापुर गुजराती सोसाइटी का दी ओरिजिनल नवरात्रि डांडिया। ओए होए, अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया बॉस। सिंगापुर में तो रहते हुए नवरात्रि के सीजन में ये बहुत जरूरी है, पक्का।
2: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, they are spicy and they are happening. Join us on Masti Top 20.
1: Masti Top 20 में of course इस समय मैं एक दूसरी बात भी करना चाहूंगी। आप जानते हैं कि हमारा एक खास पॉडकास्ट जो कि आज लॉन्च हो रहा है, एंड दैट इज बिहाइंड द सक्सेस विद रेणुका। जी हाँ, एक बहुत ही, मैं तो ये कहूंगी कि दिस इज अ टॉपिक एंड दिस इज अ सब्जेक्ट एंड दिस इज अ पॉडकास्ट विच इज वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सेलिब्रिटीज और इन सब लोगों की बातें तो बहुत लोग करते हैं, इनके स्ट्रगल्स की और क्या क्या, लेकिन एक डेली लाइफ में भी स्ट्रगल्स होते हैं और उसके बियॉन्ड भी एक जिंदगी होती है जो कि हम लोग कई बार उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो हमारे आसपास के जो हीरोज हैं फोकस्ड मेनली ऑन एंटरप्रेन्योर्स, ये वाली स्टोरीज आपको बहुत इंस्पायर करेंगी, बहुत ज़्यादा ये बताएंगी कि ये जो सारा ग्लैमर और ग्लिट्स और पैसा और सक्सेस आप देखते हैं ना, इसके पीछे हर एक इंसान ने कभी कभी एक ऐसी ज़िंदगी बताई है जो कि वाकई हैज़ बीन नॉट ईजी। तो बस ऐसी कहानी आज हमारा लॉन्च एपिसोड है मस्ती AVI पर, आप देख सकेंगे 7:00 से। इट्स कॉल्ड बिहाइंड द सक्सेस विद रेणुका। और आज के दिन में जो हमारे गेस्ट हैं, वेल आई कैन टेल यू, जब नौकरी छूट जाती है और साथ ही में एक बिजनेस आपके सामने आता है और आपको लगता है कि अगर ये बिजनेस मैंने नहीं लिया तो मुझे देश छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने बिजनेस लिया तो दैट केम विद द डेट ऑफ $2 million। कौन खरीदता है ऐसा बिजनेस, कौन ऐसा बिजनेस टेक ओवर करता है जिसमें ऑलरेडी 2 million का डेट है? कोई नहीं करता ना। लेकिन इन्होंने ये किया, और जब ये किया उसके बाद उसको किस तरह से टर्न अराउंड किया, किस तरह के चैलेंजेस आए, और आज के दिन में वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, नौकरी में वापस जाएंगे नहीं जाएंगे, इन सब के बारे में ऑफकोर्स आप देख सकते हैं। एंड दिस इज समथिंग दैट यू गोइंग टू बी वॉचिंग एट 7 PM ऑन मस्ती AVI। जी, हमारे यूट्यूब पर, हमारे ऐप पे मस्ती AVI बटन पे, या फिर हमारे फेसबुक पेज पर, हर जगह दिखेगा आपको ये। एंड दिस इज द पॉडकास्ट वेयर योर्स फेथफुली, दैट इज माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग टू डॉक्टर शरद गोविल। गाना नंबर 11 कमिंग अप नेक्स्ट ऑन रेडियो मस्ती 24/7। दिस इज मस्ती टॉप चार्ट्स।
3: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 11।

0: गाना काफी बोरिंग लगता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट द लिरिक्स आर वेरी ब्यूटिफुल. इट इज ओरिजिनल वर्सेस न्यू. जी हाँ, आइकॉनिक 2007 की कल्ट क्लासिक जो थी आवारापन, इट वाज ओरिजिनली संग बाय मुस्तफा जाहिद एंड कंपोज किया था प्रीतम ने. 2006 से लेकर 2026 तक का जो सीक्वल है, इट फीचर्स मल्टीपल न्यू एंड रिक्रिएटेड इटरेशंस. तो आप सोच सकते हैं ये जो ऑफिशियल नया वर्जन है इसको गाया है साज भट्ट ने और सुबोध शर्मा ने, और जो म्यूजिक है इसको रिक्रिएट किया है मिथुन ने. 6 मिनट का ये गाना, बाप रे, लेकिन आजकल के गानों से कहीं कहीं कहीं लंबा. वेल आई कैन टेल यू कि जो ओरिजिनल सिंगर है मुस्तफा जाहिद, उन्होंने भी इंडिपेंडेंटली रिलीज किया अपना सेपरेट वर्जन, वो भी अगस्त के ही महीने में, इसके कॉम्पिटिशन में, डेडिकेटेड टू आर्ट एंड म्यूजिक ट्रांसेंडिंग बॉर्डर्स. और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अगर आप एक नया गाना रिलीज करेंगे नई आवाजों में, मैं भी अपना ओरिजिनल गाना रिलीज करूंगा अपनी ही आवाज में. क्या बात है, क्या जिद है, क्या क्रेज है. बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट व्हेन इट कम्स टू आवारापन 2 के साउंडट्रैक और बड़े सारे गाने ऑन मस्ती टॉप चार्ट्स. तेरा मेरा रिश्ता है पुराना, है ना रुचिका? है तो सही. आ गई तुम सोड़िए.
1: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी, और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी. Zaxxon of India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition standia, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.
2: Trending song, number 10.
3: Pure desh ko pagla dunga. Abhi to kuch pesh kiya hai. Suno.
4: Money follows, my brother. Chabna.

0: याद।
1: Money follows my brother. I mean, what kind of a gana is this? It's quite fun sounding, right? Radio Masti 24/7 par Masti Top Charts.
2: Pure desh ko.
3: गरम कड़ाही, बनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी,
4: क्यों सोचते ही आया ना याद तो दिवाली वाला शाही स्वाद।
5: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। Shahi Maharani's Royal Mithai and Namkeen. Early bird prices from $72 plus onwards until 11th October. For more details, call 6235-8840 or log on to shahimaharani.com.
1: And in case you guys are wondering, ye money follows my brother hai kya? Well, it's a viral catchphrase and meme jo ki originate hua hai actor and politician Ravi Kishan ki taraf se during an appearance on one of the podcasts. Podcast mein Ravi Kishan jo hai, inse pucha gaya ki whether he valued pehchan, matlab recognition aur paisa. Aur unhone kya bola? Recognition. उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, यू शुड फोकस ऑन बिल्डिंग वैल्यू एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट बिकॉज मनी फॉलोज माई ब्रदर, और मनी फॉलोज माई ब्रदर पर बन गया गाना। मतलब सोचिए हाउ पीपल जस्ट कैच ऑन टू सम फ्रेज एंड देन डिसाइड। इनका कॉन्फिडेंट डिलीवरी, फेशियल एक्सप्रेशन और ये सब करके तो आपको पता ही है कि ट्रेंड हो गया टोटली इंस्टाग्राम रील्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, एक्स पे एंड ऑफकोर्स मीम पे मीम, मीम पे मीम। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट रवि किशन इज ऑल अबाउट। रेडियो मसी 24/7 पर गान नंबर 9 जो आएगा वो थोड़ा कुछ अलग ही आएगा। मतलब पता नहीं, मैं कह रही हूं ना, आई कैन नॉट गेट ओवर दिस प्लेलिस्ट। टॉक्सिक के साउंडट्रैक से। लेकिन फिलहाल उससे पहले एक बढ़िया सा गाना हो जाए आपके और हमारे झूमने का टाइम है, थोड़ा सा फ्लैशबैक हो जाए, थोड़ा सा बॉलीवुड के एवरग्रीन गानों में से एक किशोर दा का गाना हो जाए। ब्यूटिफुल वन इज दिस वन।
6: Bollywood Flashback.

0: मैं क्या गाना है, क्या गाना है रेडियो मसी 24/7 पर, मजा ही आ गया। और आपको पता है कि गाने जहाँ पर हम एंजॉय कर रहे हैं वहीं पर साथ साथ में मुझे जो आपके मैसेजेस आ रहे हैं उसमें खूब मजा आ रहा है मेरे को पढ़ने में। अगर आपको कोई खास गाना सुनना है तो आई ट्राई टू फिट इट इन बिटवीन, जी हाँ, इन बिटवीन ऑल द मसी टॉप चार्ट्स। सो फिर भाई डिपेंड करता है आप मुझे कैसे ट्रीट करते हो आज के दिन में, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आपको मुझसे कितना प्यार है और मुझे आपके लिए कौन सा गाना चलाना है ना।
1: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
0: इस घंटे में रह गए गाने दो, गाना नंबर 9 और गाना नंबर 8, और वो दोनों ही मतलब काफी इंटरेस्टिंग गाने हैं। 9 नंबर पे जो गाना है वो मुझे कोई खास पसंद नहीं है, लेकिन जो 8 नंबर पे है वो मुझे काफी पसंद है। आपकी पसंद क्या है ये भी आप मुझे साथ में बता दीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल। But just before we get into that, guys, एक और खबर इस घंटे बॉलीवुड की, जी हाँ, which is कि अगर आपके ऊपर 60 करोड़ का फ्रॉड का केस लगा और आप बोले कि भाई मुझे काम से जरा ओवरसीज जाना है तो जाने दीजिए, तो कोर्ट्स आपको क्या कहेंगे? Of course, कोर्ट्स आपको कहेंगे कि बेटा ऐसा है, 60 करोड़ का फ्रॉड का केस लगा हुआ है, भागने के चांसेस बहुत हाई हैं, आपको हम नहीं जाने देंगे। बात कर रही हूँ मैं इस टाइम शिल्पा शेट्टी और उनके जो पति हैं बिजनेसमैन राज कुंद्रा की। जी हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट में जब इन्होंने जाकर अर्जी दी कि हमें तो जरा बाहर जाना है।

0: जी हाँ, ट्रैवल अब्रॉड करना है। बहुत टाइम हो गया जी कि हम भारत में ही ट्रैवल किए जा रहे हैं, हमें ज़रा कोलंबो जाना है और बिजनेस ट्रिप है। तो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम वानखड़, उन्होंने कहा ऐसा है सर कि आप सबमिट कीजिए एक एफिडेविट डिटेलिंग द पर्पज़ ऑफ योर ट्रिप इंक्लूडिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन, साथ ही साथ में एविडेंस सपोर्टिंग द क्लेम कि वाकई बिजनेस पर्पज़ है, और फिर उसके बाद में हम आपको सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप 60 करोड़ डिपॉजिट कीजिए और फिर आप जहां मर्जी है वहां जाइए। अब ये सुनने के बाद में कौन जाएगा ना। तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जो है ऑफ द मुंबई पुलिस, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस समय ये वाला केस, व्हिच अलेजेस दैट शिल्पा शेट्टी एंड कुंद्रा दे डाइवर्टेड इन्वेस्टमेंट फंड्स फॉर पर्सनल यूज। भाई इस समय इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें ये पता लग रहा है कि जो कोर्ट है उसने कोई इमीडिएट ऑर्डर्स तो नहीं जारी करे हैं, द लुकआउट सर्कुलर इशू नहीं किया है उनकी तरफ, लेकिन द मैटर इज स्केड्यूल्ड फॉर फर्दर हियरिंग और वो होने वाला है अगले ही हफ्ते। और अगले ही हफ्ते होने वाला मेरा हैप्पी बर्थडे, सो डोंट यू फॉरगेट, ऑलराइट, मेक श्योर दैट यू गाइज विश मी। अब मैं डेट नहीं बताऊंगी, आप मुझे रोज विश कर देना। अगला हफ्ता है तो 5 ही तो दिन है उसमें, है ना, वीकेंड्स नॉट इंक्लूडेड।
1: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 9।

0: fresh. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yes, Musti Top 20. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters.
1: जोश में रहने के लिए सिर्फ एक ही जगह नहीं, दो दो जगह पर मैं इस समय मौजूद हूँ. जी हाँ, आई एम राइट हियर विद यू लाइव ऑन मस्ती टॉप चार्ट्स, और साथ ही साथ में आई एम राइट देयर ऑन मस्ती एवीआई विद द लेटेस्ट ऑफरिंग ऑफ आवर मस्ती मीडिया नेटवर्क. इट इज कॉल्ड बिहाइंड द सक्सेस विद रेणुका. वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी. जहां जाओगे हमें पाओगे.
0: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर spicy and they are happening. Join us on Masti Top.
1: You can be watching us live right now हमारे YouTube पेज पर और साथ ही साथ में हमारे Facebook पेज पर. जी हाँ, और of course through the Masti Media 24/7 app under Masti AVI भी आप हमें देख सकते हैं इस समय, और हमें Masti Radio के अंदर सुन भी सकते हैं.
2: तुम क्या हो कैसे कहूँ.
1: What a beautiful track, Batwara 1947.
2: शामों की रोशनी हूँ तुम हो किरण किरण.
1: It's called Tabassum. ये गाना है नंबर 7 पर आज इसी टाइम पर. लेकिन ताजा ताजा खबर तो मैं कुछ और लेकर आई हूँ. बात कर रहे थे हम 4000 करोड़ की बनी हुई फिल्म रामायण की, तो भाई भारत में जो रहते हैं उनके लिए तो एक बहुत ही बढ़िया खबर है इस टाइम पर. पार्ट 1 रामायण की जो है अमंग्स द मोस्ट एंटिसिपेटेड रिलीजेस ऑफ 2026. वेल, आज के दिन में डायरेक्ट करी है नितेश तिवारी ने, एंड द एम्बिशियस माइथोलॉजिकल एपिक इज प्लान्ड एज अ 2-part सिनेमैटिक सागा विद रणबीर कपूर प्लेइंग लॉर्ड रामा, साई पल्लवी एज सीता एंड यश एज रावण. और साथ ही साथ में आपको ये मैं बताना चाहूंगी कि रिलीज हो रही है भारत में एक दिन पहले. जी हाँ, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. भाई बहुत बड़ी बात है, नॉर्थ अमेरिका में भी पेड रिव्यूज हैं, लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ी खबर. क्यों? क्योंकि द स्टोरी इज ऑब्वियसली ट्राइंग इट्स बेस्ट टू बी राइट ऑन टॉप ऑफ माइंड. जब आप दिवाली में बिजी हो जाएंगे उससे कहीं पहले आप ये फिल्म देख पाएंगे. आफ्टर ऑल दिवाली पर रामायण ना देखी तो कब देखी, राइट? कमिंग अप गाना नंबर 7.
3: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 7.

0: हाय हाय ऐसे ऐसे कर करके जो भी गाने एंड होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ पुराने जमाने के हो सकते हैं। रेडियो मस्ती 24/7 पर सुन रहे हैं आप मस्ती टॉप चार्ट्स, और मस्ती टॉप चार्ट्स पे जो अगला गाना है ना दैट इज वेरी रेलेवेंट स्पेशली टुडे। जी बिल्कुल, गाना नंबर 6 इस टाइम पर, ये वाला गाना जहाँ पर जब से इस साल में जून के महीने में ट्रेलर आया था ना वेलकम टू द जंगल का, तो तब से कुछ ऐसा हो रहा था कि हॉट टॉपिक सा बन गया था ये वाला फिल्म का, ट्रेलर ही नहीं बट बाकी भी बहुत कुछ इंक्लूडिंग द लॉन्च, जहां पर बहुत से लोग एक्साइटेड थे टू सी द फ्रेंचाइज रिटर्न विद अ मैसिव कास्ट। द ट्रेलर हैज ऑफ कोर्स इट स्पार्क्ड मिक्स्ड रिएक्शंस ऑनलाइन, और जो नाना पाटेकर हैं उन्होंने उस टाइम पर मॉक किया था, जी हां मजाक उड़ाया था मेकर्स ऑफ द फिल्म को फॉर एक्सक्लूडिंग हिम एंड अनिल कपूर फ्रॉम द लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट। उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि भाई ये कौन सा तरीका हुआ कि आपने हमें इतनी बड़ी फ्रेंचाइज से अलग कर दिया। इनफैक्ट द वायरल मैसेज That went out all the way was 25 actors को तो ले लोगे लेकिन उदय शेट्टी और मंजू भाई जैसे ओरा कहाँ से लाओगे। जी हाँ बिल्कुल, उसी के साथ में आज के दिन भी ऐसा लगता है कि एक ओरा जो कि खत्म हो चुका है आज के दिन में, उसी को याद करते हुए ये वाला गाना नंबर 6 हम चलाएंगे यहाँ पर रेडियो मसी 24/7 पर। और उसके बाद एक बहुत ही खास रिक्वेस्ट वाला गाना जो कि आएगा, जी हाँ, आपको और हमें खुश करने के लिए। इस समय हुआ है 7:17 और चल रहे हैं हमारे मस्ती टॉप चार्ट्स पर कुछ ऐसे खास गाने। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल के मस्ती टॉप चार्ट्स मुझे ना धुरंधर के बाद से पसंद आने कुछ बंद ही हो गए हैं।
1: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 6।

0: आप भी हमको पुकारोगे तो हम जरूर आएंगे, और अगर आप कोई हमें हिंट मारोगे कि हमारा वाला गाना चलाओ तो हम जरूर चलाएंगे। ऑन रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है खो गए हम कहां के साउंड ट्रैक्स। इट्स ब्यूटीफुल, वेरी वेरी वेरी सूदिंग ट्रैक, इट्स कॉल्ड बाहों में तेरी। ऑन रेडियो मस्ती 24/7 हमारा शो का नाम जो इस टाइम है वो है मस्ती टॉप चार्ट्स, और मेरा नाम जो है वो है रेणुका। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने।
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट
0: आउट। और अगला गाना वो जिसके पीछे मुझे डांट भी पड़ती है और प्यार भी बहुत मिलता है, लेकिन उस गाने को चलाने से पहले क्यों ना मैं एक ऐसी खबर बता दूं विच ऑल्सो रेजेज अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट एक इंसान की जिंदगी में। कुछ लोग उसको पसंद करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, कुछ एलिगेशंस होते हैं, कुछ एक्यूजेशंस होते हैं, प्रूफ कोई नहीं कर सकता, फिर भी एक इंप्रेशन होता है, और जाने के बाद में कुछ लोग उसको सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातों के लिए याद करते हैं और कुछ कहते हैं इविल डेड। Well, I'm talking about none other than Nana Patekar. जी हाँ, तनुश्री दत्ता जिन्होंने accuse किया था नाना पाटेकर को of sexual harassment 2018 में, आपको याद ही होगा Me Too movement, right? Well, उनसे आज के दिन में पूछा गया कि आपको पता है नाना पाटेकर अब इस दुनिया में नहीं रहे, आपका क्या reaction है? So well, she shared a video on her Instagram story from an airport saying she was still processing the news. Well, of course, उन्होंने साथ में कहा condolences to the family, लेकिन उसके अलावा कहा क्या कह सकते हैं Evil Dead, मैंने सुना है, I've heard the news, आज मेरा बहुत काम है। And the other thing she said was कि मैं आज के दिन सोच रही थी कि मैं बहुत कुछ पोस्ट करूंगी, कुछ लाइव है, कुछ मेरा बहुत बड़ा इवेंट है, कुछ ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं, प्रॉब्लम सारी ये हो जाएगी कि आज के दिन में जो मीडिया है वो सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ नाना पाटेकर के फ्यूनरल को ही कवर करेगा, तो मेरा जो इवेंट है वो पीछे रह जाएगा। What do you think, guys? When somebody passes away, must you still remember all that you hated about the person? Ya aap kehte hain, chala gaya yaar, ab to bhul jao. Hai na ye gana wahi, jiske piche mujhe daant bhi padti hai aur pyar bhi sabse zyada milta hai. Up next on number 4, coming up. Not number 4, number 5, coming up, Gehra Hua, from the soundtrack of Dhurandhar.
1: Trending song, number 5.

भाई कुछ भी कह लो, धुरंधर का एक गाना आता है ना, सारे सारे गाने ऐसे लगता है पीछे छूट गए। ऑन रेडियो मस्ती 24/7, आई विश आई कुड प्लेस दिस गाना येट अगेन ऑन नंबर वन, लेकिन क्या करें ना, दुनिया मानती नहीं है और अकेली मेरी चलती नहीं है। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस गाइस, इट्स मस्ती टॉप चार्ट्स विद रेणुका एंड दिस इज गाना नंबर 5।

0: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी।
1: क्यों, सोचते ही आया ना याद तो दिवाली वाला शाही स्वाद।
2: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानीज रॉयल मिठाई एंड नमकीन। अर्ली बर्ड प्राइसेस फ्रॉम $72 प्लस ऑनवर्ड्स अंटिल 11th अक्टूबर। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 6235-8840 और लॉग ऑन टू shaheemaharani.com। इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxalon India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition stanya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxalon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxalonindia.com.
3: सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आपके कोई क्लाइंट्स आपके काम पे खुश हो जाएं। तो जैसे कि आप जानते हैं, फिलहाल के लिए अभी अभी चल रहा था हमारा एक बहुत ही खास प्रोग्राम, विच इज लाइक यू नो व्हाट, 10th ईयर का आप कह लीजिए कि एक नई चीज, बिकॉज एवरी ईयर व्हेनेवर वी हैव आवर एनिवर्सरी, व्हेनेवर वी सेलिब्रेट मस्ती की यू नो एक सालगिरह, तो हम एक नई चीज कुछ लॉन्च करने की कोशिश करते हैं उस टाइम पर, चाहे उस प्रोग्रामिंग में चेंजेस हो, चाहे कोई नया एलिमेंट हो, चाहे कोई रिकॉर्ड हो। आप जानते हैं, यू बीन विद अस through the past many years, so you know exactly what I mean, right? On Radio Mercy 24/7,
4: they are fresh, they are hot, they are spicy and they are happening. Join us on Masti Top 20.
3: जी बिल्कुल, तो बात मैं कर रही हूँ आज के दिन में, जो अभी अभी हमारा पॉडकास्ट जो कि एक नया हमारा एक लॉन्च हुआ है आज ही के दिन में, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और खुशी कुछ इस तरह की हो रही है कि लग रहा है हमने एक नए एरिया में कदम रखा है, और इस पॉडकास्ट के साथ में वी हैव डेफिनेटली एंटर्ड अ न्यू फील्ड, अ न्यू फंक्शन, अ न्यू पिलर, एंड वी होप दैट दीज प्रोडक्शंस विल गो अ लॉन्ग वे इन ऑल्सो एंटरटेनिंग यू। एंटरटेनमेंट के साथ में इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, इंस्पिरेशन होना जरूरी है, बहुत कुछ होना जरूरी है, राइट? रेडियो मसी 24/7 पर मैं रेणुका आपके साथ एंड ब्रिंगिंग टू यू द मसी टॉप चार्ट्स, जिसके अंदर हमारा अगला गाना कुछ ऐसा है। जी बिल्कुल, कॉकटेल 2, इसी ये गाने बिल्कुल धुरंधर के बाद में बहुत ऊंचाई तक पहुंचे, बट नॉट एज मच एज आई वुड हैव एक्सपेक्टेड देम टू बी। राइट राइट राइट और एब्सोल्युटली राइट। अगर वो वाले दिन वापस आ जाएं जहां पर धुरंधर के गाने ही पूरे के पूरे 20 के 20 चल रहे थे तो मजा आ जाने।
5: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 4।

और जहां एक तरफ चल रहे हमारे मस्ती टॉप चार्ट्स, वहीं पर द सूदिंग यस्टरडेज अमेजिंग अमेजिंग सुपर हिट्स में से एक ये गाना अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में शाहरुख खान को याद करते हुए, जो कि मुझे हमेशा याद करना अच्छा लगता है, सुनते हैं ये वाला गाना। यस बॉस, यस बॉस, वेल एब्सोल्युटली यस बॉस।

0: यार ऐसे गाने जब बीच में आ जाते हैं ना तो आई टेल यू टोटली टोटली आंखें ना रिजुविनेट कर देते हैं, जिसे कहते हैं रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है रेणुका के साथ में मस्ती टॉप चार्ट्स।
1: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।

0: बिल्कुल रेनुका योर डार्लिंग, यहाँ पर आप ही के मैसेजेस यहाँ पर मैं जवाब दे रही हूँ। आप में से बड़े सारे लोग इस टाइम पर तुक्के लगाने शुरू हो चुके हो कि रेनुका आप बता दो लास्ट के तीन गाने कौन से हैं, क्योंकि अब 13 मिनट रह गए हैं, इनफैक्ट अब 12 मिनट रह गए तुम्हारे शो को खत्म होने में, तो क्यों नहीं अब बता देती हो। तो मुझे भी लगा हाँ यार मैं बता ही देती हूँ, आप लोग तो मार काट पे उतर आते हो मतलब बिल्कुल भी। तो ठीक है, मैं ना दो गाने बताती हूँ, तीसरा बताने का मेरा मन नहीं है। ऐसा कह के क्या मैं निकल सकती हूँ यहाँ से, आपको क्या लगता है?
1: गुलाबी साड़ी अणी लाली लाल लाल,
0: दिस इज वन ऑफ द गानाज विच कुड बी नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री।
2: सियारा लाए मस्कारा लकिया निभाए रखना,
0: this could be one of the ganas which could also be number 1 or number 2, and then of course there is one more gana which could also be number 1, number 2, number 3. फटाफट मुझे बता दो कि यहाँ पर कौन सा गाना होने वाला है नंबर 1 पे। देखते हैं क्या सीखा है आप लोगों ने हमसे इतने टाइम से, क्या सीखा है तुमने जल्दी बताओ।
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
4: Trending song number 3.

0: धमाल 4 के साउंडट्रैक से अभी आप सुन रहे थे गाना जी हाँ नंबर 3 पर। और जाते जाते बस एक खबर भी आपको दिए देती हूँ। वेल आज का शो हैज बीन अ लिटिल अप लिटिल डाउन राइट, बिकॉज नाना पाटेकर जी की बात करते करते करते करते ऐसा बीच बीच में लग रहा है कि यार देयर इज समबडी यू नो हु इज हैविंग अ फ्यूनरल इन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड यहाँ पर आप उनकी बात कर रहे हैं एंड यू आर काइंड ऑफ बिडिंग फेयरवेल। एंड साथ ही साथ में ऑफकोर्स गाने जो हैं आप बदल भी नहीं सकते हैं, बीच बीच में सिर्फ बात कर सकते हैं उनके बारे में। दे आर फ्रेश, दे आर hot, they are spicy. So well, right now, जाने से पहले आपको पता है कि मैं जब दो गाने रह जाते मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। जाने से पहले सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि नाना पाटेकर जी हाँ उनकी उनकी जो क्रिमेशन है, जो फ्यूनरल है, इस समय खत्म हो चुकी है और बिल्कुल स्टेट ऑनर्स के साथ में। लेकिन किसी ने ये कहा कि भाई नाना ने अपना फायरवुड, जो लकड़ी है ना अपने फ्यूनरल के लिए, अपने आप ही प्रिपेयर करी थी, बिकॉज एट वन पॉइंट ही हैड एक्चुअली टोल्ड अ फोटोग्राफर फ्रेंड दैट ही वॉज कीपिंग देम ड्राई सो अटेंडीज वुडंट क्राई एट हिज क्रिमेशन ड्यू टू इट। मतलब किस तरह की बातें करते हैं लोग, कभी कभी जानते हैं कि भाई जाने वाले हैं या जब जाएंगे तो किसी को भी रोता हुआ छोड़ के नहीं जाने वाले। ऑलराइट, ऑन दैट नोट गाइस, आई होप आप भी लोग खुश हैं हमारे गाने नंबर 1 की सिलेक्शन से। मैं निकल रही हूँ यहाँ पर एंड आई होप यू हैव अ फैंटास्टिक रेस्ट ऑफ द इवनिंग अहेड। टेक गुड केयर गाइस एंड मिस मी, ओके, याद जरूर करना। बाय।
1: Trending song number 2.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh.

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
3: टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
2: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Josh
3: Weekend ka maza with the best of Bollywood playing only on Radio Masti 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड। मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: रात अकेली है
0: तो क्या हम तो आप

0: तैयार हो जाइए जब ढोल बजेगा, डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा It's time for Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
1: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
2: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है। सुनो, नाम या दाम? नाम
3: मनी फॉलोज माय ब्रदर।
4: जब

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
1: जोश में रहो।
2: और कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे?
3: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें, और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
1: जोश में रहो।
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आप

यहां से कहां जाऊं, कहां मैं छुप जाऊं, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊं, हूं खुद से जुदा।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
2: जरा मैं भी सुनूं।
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी।
2: तुमसे नहीं,

0: भी ख्वाब सा देखा है।
1: कहो, तुम भी कहो।
0: खुद पे इतरा तो न जाओगे?
1: नहीं, खुद पे नहीं,

रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे

आंखों से हटाया चश्मा, आंखें तो मिलाओ जी। दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी। अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी। उनके फ्यूचर सन इन लॉ की

रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है।

0: ऐ मेरी हमरंग मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: रात अकेली है,
1: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
2: जोश में रहो।
3: क्या
4: हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की।
3: क्या क्या क्या

0: टेम्पो 80-90 पूरे 100, रात के बज गए 1:45, जो होता है होने दो।
1: रात अकेली है
2: तो क्या हम तो

कोकलाची पाकी जुमेरात आई है, जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है। कोकलाची पाकी जुमेरात आई है, जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है। कोकलाची पाकी जुमेरात आई है, जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि।

नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव की तरफ से नवरात्रि की आपको ढेरों शुभकामनाएं। शुभ नवरात्रि।

लाल रंग की चुनरी, सजा है माँ का दरबार, हर्षित हुआ पूरा संसार। मुबारक हो आपको नवरात्रि का ये त्योहार। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव की तरफ से आप सभी को शुभ नवरात्रि।

या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि।

नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव की तरफ से नवरात्रि की आपको ढेरों शुभकामनाएं। शुभ नवरात्रि।

0: मात सुबह के जो हमने भजन सुने हैं, वेल ऑब्वियसली दैट्स अ रिमाइंडर कि नवरात्रि शुरू हो चुकी है और आप सभी को हमारी पूरी की पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं. अ वेरी गुड मॉर्निंग.
1: मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर
2: द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
1: न्यूज़, views and a pinch masti.
0: आइए आइए, आपका स्वागत है रेडियो मस्ती 24/7 पर. जी हाँ, पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क. हम हैं एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन. के अलावा और भी बहुत कुछ. खैर, इस समय वेबसाइट की बात तो मैं क्या ही करूंगी कि हम ये करते हैं वो करते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि मंडे सुबह हम क्या करते हैं. और मंडे सुबह हम करते हैं बिल्कुल आपका स्वागत एक इस तरीके से कि आपको पूरी पूरी दुनिया की खबरें दे दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप पूरे हफ्ते के लिए एब्सोल्युटली रेडी रेडी मेड हो जाएं. और रेडी जब आप हो जाएंगे तो हर तूफान का सामना कर पाएंगे. आफ्टर ऑल नवरात्रि भी हमको यही सिखाती है ना, है कि नहीं. सो ऑन रेडियो मस्ती 24/7 वेलकम टू अ ब्रांड न्यू मंडे, अ ब्रांड न्यू शो. जी हाँ, अक्टूबर के महीने का, नहीं नहीं, जैसे कि मैं कहती हूँ पावन महीने का. समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो कल समझ जाएंगे ना, जब मेरा हैप्पी बर्थडे होगा. बट फिलहाल के लिए नवरात्रि की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे. और इस हफ्ते के लिए आपको सिर्फ इतना कहेंगे कि जो फेथ है ना, फेथ इट गिव्स अस स्ट्रेंथ. और नवरात्रि हमें याद दिलाती है टू फाइंड दैट स्ट्रेंथ within us. So may each one of you have that strength within you and make sure that you are ready. You're ready with all the strength in the world to face the week ahead and the year ahead.
3: यही गा रहे हो ना मेरे लिए आप. उफ उफ, तुमसे मिलके, मुझे पता है मुझसे मिलके सबको ऐसा ही लगता है.
0: चलिए छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक यहाँ पे, वापस आगे सीरियस बातें शुरू करेंगे. रेडियो मस्ती 24/7 पर दिस इज द मॉर्निंग शो, ब्रिंगिंग टू यू न्यूज एंड अपडेट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड विद योर फेवरेट. आई एम रेणुका.

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: वेलकम बैक. रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है द मॉर्निंग शो. मॉर्निंग शो की पहली खबर. जी हाँ, एज ऑलवेज से लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द होम ग्राउंड. सीरियस हेडलाइंस with a not so serious vibe only on the Urban Redevelopment Authority URA ne warn kiya hai that enforcement action may be taken against those responsible for unauthorized works in strata titled residential unit, and this is amid a persistent trend of suspected cases of such works being reported to the agency. भाई, कितनी बार आप लोगों को कहा है कि सिंगापुर में रूल्स तोड़ने की कोशिश कीजिए भी मत, आगे पीछे होकर पकड़े ही जाओगे आप. सो वेल, एग्जांपल्स मिल रहे हैं ऐसे कामों के जो कि बिना अप्रूवल के, जी हाँ, अनऑथराइज्ड काम हो रहे हैं घरों में, रेजिडेंशियल एरियाज में, यूनिट्स में. एंड दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ लो ऑफ लॉफ्ट्स और मेजनाइन्स विद एन एरिया ऑफ मोर देन 5 square meters, और अनऑथराइज्ड इनक्लोज स्ट्रक्चर्स ऑन प्राइवेट रूफ टेरेसेस और प्राइवेट फर्स्ट स्टोरी पैटियोज. अब भाई, एक हाल ही में कल ही के दिन में एक स्टेटमेंट जारी की गई और यूआरए ने ये कहा कि उनको 147 रिपोर्ट्स मिले हैं ऑफ सस्पेक्टेड केसेस ऑफ अनऑथराइज्ड वर्क्स इन 24 एंड 148 इन 2025. एंड द फर्स्ट 9 months ऑफ 2026 116 सस्पेक्टेड केसेस हैव बीन रिपोर्टेड. अब ये जो रिपोर्ट्स हैं टिपिकली रिसीव किए जाते हैं फ्रॉम फेलो रेजिडेंट्स ऑफ द एस्टेट और फ्रॉम इट्स एमसीएसटी एज वेल एज फ्रॉम पीरियोडिक स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शंस रिक्वायर्ड फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स. 90% almost of the suspected cases were found to have unauthorized works, and that enforcement action has been initiated against parties involved in a number of cases. Aur saath hi mein URA ne kaha ki hum action lena bilkul continue karenge when we establish more cases of infringements. As investigations are ongoing, we are unable to share more details. Ab bhai, baat sirf itni si hai ki prosecute ho sakte hain offenders, to pange aap na le. Agar aapko authorized karna hai apna kaam, तो वही बेहतर है ना सिंगापुर में, जानते हैं ना आप ये बात. We continue on the retro beat this morning. जी हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 पर बढ़ते हैं आगे और मैं मिलती हूँ आपको right after these two songs. Good morning everyone on the morning show. Renuka with you.
2: उठी सबके

सप्ताह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, Surf Radio Masti.

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: पहली बात तो ये कि मुझे आप सभी से हमेशा किसी भी इवेंट पे मिलके सबसे ज़्यादा मज़ा आता है. इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊँ, मैं किसी भी इवेंट पे जाती हूँ ना, सबसे पहले मैं सोचती हूँ यार मेरे मस्ती के लोग कहाँ हैं, कहाँ हैं, कोई ना कोई तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना. सुबह का असली वेक अप कॉल द मॉर्निंग, और वही मस्ती वाले लोग मेरे यहाँ आते ही मुझसे ये पूछते हैं कि रेणुका आज आवाज को क्या हुआ. तो वेल, आवाज सिर्फ मेरी नहीं, आवाज आधी सिंगापुर की बदली हुई है. क्योंकि क्या है ना, जो हवा हमारे अंदर जा रही है ना इस टाइम पर, उस हवा ने हमारी हवा निकाली हुई है. एयर क्वालिटी अक्रॉस सिंगापुर रिमेन्ड इन द अनहेल्दी रेंज ऑन संडे, क्योंकि हेजी कंडीशंस, तो मतलब बारिश आने के बावजूद 24 आवर PSI, जी हाँ, अनहेल्दी रेंज में रहा अक्रॉस ऑल द 5 रीजन्स, वाइल 1 आवर PM 2.5 रीडिंग्स वर ऑल इन द एलिवेटेड बैंड. एक अपडेट कल ही के दिन में जो नेशनल एनवायरनमेंट एजेंसी ने दिया, सेड मॉडरेट हेज वाज ऑब्जर्व्ड ओवर पार्ट्स ऑफ सिंगापुर पेनिनसुलर मलेशिया कलिमांतान एंड द सदर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ सुमात्रा एंड द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ सरावाक. 24 घंटे का PSI फोरकास्ट टू बी अनहेल्दी, और वही हुआ, अनहेल्दी टू हाई अनहेल्दी. मतलब आप सोच सकते हैं कि आज के दिन भी कोई हमको आराम मिलने वाला नहीं है. अंडर द प्रिवेलिंग ईस्ट साउथ ईस्टर्ली और सदर्न साउदर्ली विंड्स, स्मोक हेज मे कंटिन्यू टू ड्रिफ्ट टुवर्ड्स सिंगापुर. ये बात कल ही कह दी गई थी. अब एयर क्वालिटी जो है सैटरडे से, जैसा कि हम जानते हैं, काफ़ी अनहेल्दी रही. इनफैक्ट ओवरनाइट तो इट रीच्ड न्यू हाइज फॉर दिस ईयर्स हेज सीजन, 192 तक पहुंची. इनफैक्ट ये भी कहा गया कि 201 पर पहुंचेगी तो बेटा हम बिल्कुल बंद कर देंगे इवन जो F1 पे एंटरटेनमेंट हो रहे हैं बाहर. सो यू नो यू गॉट टू बी रियली रियली केयरफुल. सो ऑन रेडियो मसी 24/7 गाइस, आई गॉट टू टेल यू कि N95 मास्क अगर आपको लगता है कि आपके शरीर को ज़रूरत है तो बिल्कुल लीजिए, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे अगर 200 से ऊपर PSI हो और एयर कंडीशनड हेज शेल्टर्स भी एट कम्युनिटी क्लब्स सेटअप हो रहे हैं. और इस बात पर बिल्कुल तैयारी करते हुए सिंगापुर बढ़ रहा है आगे, क्योंकि एक बार जब आप होश खो बैठेंगे ना हेज की वजह से, तो फिर आपको क्या ही पता लगेगा. रेडियो मस्ती 24/7 हैविंग अ वेरी अमेजिंग म्यूजिकल मंडे मॉर्निंग. जी हाँ, यहाँ पर रेणुका आपके साथ ऑन द मॉर्निंग शो.

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: और स्वागत है आपका रेडियो मस्ती 24/7 पर है रेनु का आपके साथ सुबह 7 बजे से 7
1: मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर मॉर्निंग शो ऑन रेडियो
0: मॉर्निंग शो पर इस समय जी हाँ बिल्कुल आपका स्वागत करते हुए मैं इतना बताना चाहूंगी कि टाइम हो चुका है बॉलीवुड के अपडेट का, तो क्या आप तैयार हैं? एक्टर इमरान खान जी हाँ, उनको डिटेन किया गया मुंबई पुलिस की तरफ से व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन अ प्रोटेस्ट एट ऑगस्ट क्रांति मैदान. नहीं, मैं बात अक्टूबर 10th की कर रही हूँ, लेकिन उस जगह का नाम है ना अगस्त क्रांति मैदान. जी हाँ, मुंबई में ये जो प्रोटेस्ट है, इट वॉज हेल्ड इन सॉलिडारिटी विद द कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट इन दिल्ली, जो कि कॉल्ड फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार. Following his detention, Imran Khan ने शेयर किया सेल्फी फ्रॉम इनसाइड द पुलिस वैन इंस्टाग्राम पर और कहा, अपेरेंटली आई एम गोइंग फॉर अ ड्राइव. मतलब मजाक सूझ रहा है सबको इस बात पे. बिफोर बींग डिटेन्ड, हमारे जो ये इमरान खान है, उन्होंने कहा द रीजन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोटेस्ट ये है कि एज अ सिटीजन, कहने लगे कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक भारत का सिटीजन हूँ, एंड साथ ही में मेरी कोई डिमांड्स नहीं है, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि व्हाई फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज बीइंग रिस्ट्रिक्टेड, व्हाई पीपल्स वॉइसेस आर बीइंग सप्रेस्ड. इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ. आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू मेक डिमांड्स ऑफ एनी वन, नॉर एम आई पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया मैं ये देखने आया हूँ. वेल ओके, अगर आपको देखने का इतना शौक है और आपका कोई व्यू नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर how valued you are. चुरा के दिल मेरा गोरिया चली. बात ये है भाई साहब, आपके पास कोई फिल्म नहीं है, और आपके पास फिल्म नहीं है तो आप किसी न किसी तरीके की पब्लिसिटी ढूंढ रहे हैं. आफ्टरऑल रेलेवेंट तो रहना जरूरी है ना इस इंडस्ट्री में. गुड मॉर्निंग एवरीवन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? 9151896 3 बताना जरा मुझे.

0: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी,
1: क्यों सोचते ही आया ना याद वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
2: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानी रॉयल मिठाई एंड नमकीन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 6235-8840 और लॉग ऑन टू shahimaharani.com।
3: Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out.
5: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर। जी हाँ, बात करेंगे हम देश विदेश की खबरों की, लेकिन सबसे पहले कहते हैं ना कि अपने घर में क्या हो रहा है पहले उसके बारे में बात की जाए। जी हाँ, मोर न्यूज कमिंग फ्रॉम सिंगापुर। सीरियस हेडलाइंस With a not so serious vibe. Only on. बात करते हैं सब्सिडाइज ट्रीटमेंट की फॉर हेज रिलेटेड कंडीशंस, जो कि अवेलेबल होगा पब्लिक हेल्थ प्रिपेयरनेस क्लिनिक्स PHPCs एंड पॉलीक्लिनिक्स में आज ही के दिन में। जी हाँ, क्योंकि एयर क्वालिटी जो है वो और ज्यादा डिटीरियोरेट हो रही है अक्रॉस सिंगापुर ड्यू टू ट्रांस बाउंड्री हेज, जैसा कि हम जानते हैं। हेल्थ मिनिस्टर ओंग येकुंग, उन्होंने अनाउंस किया द एक्टिवेशन ऑफ द हेज सब्सिडी स्कीम कल ही के दिन में, सेइंग इट वुड हेल्प सिंगापुरियंस सीक ट्रीटमेंट फॉर हेज रिलेटेड कंडीशंस एट द प्राइमरी केयर लेवल। सभी सिंगापुरियन सिटीजन्स जो हैं, दे विल बी एलिजिबल फॉर द सब्सिडीज एट पॉलीक्लिनिक्स, व्हाइल एलिजिबिलिटी एट पार्टिसिपेटिंग PHPCs विल बी लिमिटेड टू सर्टेन ग्रुप्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड सीनियर्स। पब्लिक असिस्टेंस कार्ड होल्डर्स जो है उनको मिलेगा पूरा का पूरा सब्सिडाइज्ड केयर। पायनियर एंड मडाका जनरेशन सीनियर्स विल पे नो मोर देन $5, व्हाइल फीस फॉर अदर एलिजिबल सिंगापुरियंस विल बी कैप्ड एट $10। ये जो हेज सब्सिडी स्कीम है वॉज लास्ट एक्टिवेटेड इन 2015, जब सिंगापुर ने एक्सपीरियंस किया था वन ऑफ इट्स वर्स्ट हेज एपिसोड्स एज स्मोक फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स इन इंडोनेशिया अफेक्टेड द रीजन फॉर वीक्स। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो भी एक्टिवेट कर रहा है PHPC स्कीम, विच एम्स टू कोऑर्डिनेट प्राइमरी केयर रिस्पॉन्सेज एंड प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड केयर ड्यूरिंग हेल्थ अलर्ट्स एंड इमरजेंसीज इंक्लूडिंग हेज एंड मोर रिसेंटली फॉर COVID-19। तो भाई ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है, क्योंकि सभी पार्टिसिपेटिंग PHPCs पर सिंगापुरियन जो सिटीजन्स हैं हु आर 18 एंड बिलो और 65 एंड अबव विल बी एलिजिबल फॉर द सब्सिडीज। द सब्सिडीज विल आल्सो बी अवेलेबल टू दोज ऑन पब्लिक असिस्टेंस, पायनियर जनरेशन एंड मडाका जनरेशन स्कीम्स, चैस ब्लू एंड ऑरेंज कार्ड होल्डर्स एंड मेडिकल फी एग्जेम्पशन कार्ड होल्डर्स, और सभी सिंगापुर सिटीजन्स इरिस्पेक्टिव एलिजिबल रहेंगे एट पॉलीक्लिनिक्स। जरूर पता लगाएगा जहां भी आप जा रहे हैं अगर आप परेशान हैं तो, कि भाई हमारे नीले नीले अंबर पे जो हेज छाई हुई है उसकी क्या सब्सिडीज हैं। अरे यार, चलो याद करते हैं नीले नीले अंबर को एंड होपफुली विल बी बैक। गुड मॉर्निंग एवरीवन,
2: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड एनीवेयर एनीटाइम द देसी वे।